वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: क्वालिटी फूड्स।
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
3: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल, सबसे सोना सदा सोना।
2: Wasim Jewelers.
4: With LV, I can get my car insurance from just £299, just the price I'm after right now. And if I'm hit by an uninsured driver, I won't lose my no-claim discount, because insurance is simple when it's me and LV.
5: No wonder we're rated excellent on Trustpilot. Get your quote today at lv.com. 10% of new customers pay £299 or less July to December 2025. Uninsured driver promise is non-fault accident only. Other vehicle and driver details required. LV General Insurance is part of Allianz.
6: Zara holi

0: Idolize Me. This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: ZTV HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ
2: शत्रु जी हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए
1: जो कभी दिल से जुड़े थे आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है
2: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू
1: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे
3: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता
1: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जिन मीडिया 809 BT 394 एंड Z5 ऐप
4: एडवर्टाइज ऑन द UK's नंबर 1 कमर्शियल एशियन रेडियो स्टेशन कॉल द सनराइज रेडियो सेल्स टीम टुडे ऑन 020 8574 7777

0: HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ।
1: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए।
0: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है।
1: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू।
0: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
2: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता।
0: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
3: It's the most wonderful time.
4: Booking Hero. On the beach does way more than beach holidays. We now offer millions of combinations of beach holidays, city breaks and cruises. So whether you fancy swimming, sightseeing or sitting on the top deck of a ship, we've got you covered. So stop booking around and whatever your next holiday looks like, get searching at onthebeach.co.uk.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: SonaTours.co.uk this September. Witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sona Tours. Call 0208-951-0111. Din mein bablu, raat mein lalli. Ye kalakar ban gaya hai sabka kaal. Baap ki maut ka badla lene aa gaya hai bablu. देखिए सतरंगी बदले का खेल स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5. माय मम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s. दाल मखनी बटर चिकन दीज हैव बीन माय फैमिलीज फेवरेट डिशेस यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations. खानम घी द लेगेसी लिव्स ऑन.
3: खानम घी अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल अवेलेबल एट ऑल मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन स्टोर्स. विशिंग एवरीवन ईद Mubarak. The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Well Baby and Well Kid. Ideal vitamins for children from Vitabiotics, the UK's number one vitamin company. Available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com. This is Sunrise, the UK's biggest.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: दिन में बबलू रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काल। बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू। देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5. माय मम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s. दाल मखनी, बटर चिकन, दीज हैव बीन माय फैमिलीज फेवरेट डिशेस, यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations. खानम घी, द लेगेसी लिव्स ऑन।
3: खानम घी, अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल, अवेलेबल एट ऑल मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन स्टोर्स। विशिंग एवरीवन Eid Mubarak.
2: Good music, great films, the classics, game changers on OTT and the big screen. If Bollywood floats your boat, come sail with us. Shabnam Sahi on Sunrise with Sony TV, weekdays from 9 a.m. Sunrise
4: Radio. Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is celebrating 40 years and you get a gift. Enjoy £40 off per adult on handpicked holidays, plus free transfers, spa vouchers and excursions. Discover our new deals at brightsun.co.uk/40.
3: Listener's Choice, brought to you by Colors TV.
2: The kitchen is heating up like never before. Bharti Singh and Chef Harpal Singh Sokhi are back with Tejasvi Prakash, Karan Kundra and many more in TV's most entertaining kitchen, Laughter Chef Season 3, tonight at 7:30 p.m. only on Colors TV.
5: And the time is exactly 19 after 10 a.m. on a Saturday morning, and this is how your voting went. It's straightforward. It's been a whitewash after such a long time, even though it's 2 songs by Arijit Singh. All of you favoured this song with 100% votes.

0: It's weekend brunch, 10 a.m. through until 1, and I'm giving you the chance to take part and decide which plays next. Is it song A or song B? Send the AJ a text.
1: My mum started cooking with khanam ki in the 70s. Dal makhni, butter chicken. These have been my family's favorite dishes. Using khanam ki for 3 generations. Khanam ki, the legacy lives on.
2: Khanam ki, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian stores. Wishing everyone Eid Mubarak.
1: Planning the holiday of a lifetime or visiting loved ones? Call Southall Travel 24/7. Fast, reliable and with a price match guarantee. Book now on 0208-574-8410. Southall Travel. Any airline, anywhere, anytime. At all protected.
3: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल केयर.com.

0: जिस घुंघरू ने बाप की जान ली वही घुंघरू अब बेटे का हथियार बनेगा। सिंह और पांडे परिवार की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाकर बेटा बदला लेगा। बबलू महतो काल बनकर आ गया है। दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देखिए सतरंगी बदले का खेल सिर्फ हिंदी Z5 पर। My mom started cooking with Khanam ki in the 70s. Dal makhni, butter chicken, these have been my family's favorite dishes. Using Khanam ki for 3 generations. Khanam ki, the legacy lives on.
1: Khanam ki, a brand from SOP International. Available at all major supermarkets and your trusted local Asian stores. Wishing everyone Eid Mubarak.
2: The Bhangra Showdown brought to you by Meridian Grand. If you are looking for an unforgettable wedding reception of your dreams, Meridian Grand can take care of the full package. From delicious Punjabi food presented with a wow factor to show-stopping decor, Meridian Grand has it all.
1: This is Sunrise, the UK's biggest.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: दिन में बबलू, रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काल. बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू. देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5.
3: माई मम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s. दाल मखनी, बटर चिकन, दीज हैव बीन माई फैमिलीज फेवरेट डिशेज, यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations. खानम घी, द लेगेसी लिव्स ऑन.
4: खानम घी, अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल, अवेलेबल एट ऑल मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन स्टोर्स. विशिंग एवरीवन ईद मुबारक.
5: The Bhangra Showdown brought to you by Meridian Grand. London's Meridian Grand is the most luxurious location for you to host a wedding of your dreams. Call us now on 0203-700-2727.
6: Is Shah Rukh Khan doing another set of 3 films this year? Has Vicky Kaushal decided to ace the biopic game? Are you still sipping Karan Johar's brew of the most controversial coffee in town? Or perhaps losing sleep over when Priyanka Chopra Jonas will finally do her next Masala Bollywood film? Views, reviews, interviews, competitions aur showbiz ki sabse exciting baatein, saath mein aapke favorite gaane bhi, mere yani ki Shabnam Sahi ke saath. Bhooliyega mat, Shabnam Sahi on Sunrise with Sony TV, weekdays from 9 a.m.
7: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is celebrating 40 years and you get a gift. Enjoy £40 off per adult on hand-picked holidays, plus free transfers, spa vouchers and excursions. Discover our new deals at brightsun.co.uk/40.
8: And the time now is 4:51, coming close to the end. To the end of the first hour of the show with this, Diljit Dosanjh and Dila. See you on the other side.

0: देने दीवार।
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th of June।
3: दिन में बबलू रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काज। बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू। देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5।
4: माय मम स्टार्टेड कुकिंग विद खानम की इन द 70s। दाल मखनी, बटर चिकन, दीज हैव बीन माय फैमिलीज फेवरेट डिशेस, यूजिंग खानम घी फॉर 3 generations। खानम घी, द लेगेसी लिव्स ऑन।
5: खानम घी, अ ब्रांड फ्रॉम SOP इंटरनेशनल, अवेलेबल एट ऑल मेजर सुपरमार्केट्स एंड योर ट्रस्टेड लोकल एशियन स्टोर्स। विशिंग एवरीवन ईद मुबारक।
6: The Bhangra Showdown brought to you by Meridian Grand. London's Meridian Grand is the most luxurious location for you to host a wedding of your dreams. Call us now on 0203 700 2727.
7: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is celebrating 40 years and you get a gift. Enjoy £40 off per adult on handpicked holidays, plus free transfers, spa vouchers and excursions. Discover our new deals at brightsun.co.uk/40.
8: And the time now, 6:46, signing off for another week. Now, the confusion is, I might be here next Saturday or I might not be. I would definitely be in Birmingham next Saturday for Jesse Sidhu's 30th anniversary gig at the O2 Institute that I am hosting alongside Anila Dummy with a whole host of amazing acts. So if you're coming, get your tickets now. There's only a few left. But if I'm not, Raj Guy will be here. Nads is up next. Have a wonderful week.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: दिन में बबलू, रात में लल्ली, ये कलाकार बन गया है सबका काल। बाप की मौत का बदला लेने आ गया है बबलू। देखिए सतरंगी बदले का खेल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन हिंदी Z5।
3: Saturday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
4: Hey, join me, Ajay Nagar, every weekend from 10 AM right here on Sunrise Radio for brunch. We've got fun, interactive games, the latest headlines and some awesome music, keeping you in tune, informed and entertained. So that's every weekend from 10 AM right here on Sunrise Radio.

0: Saturday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
1: There are three sides to every story, yours, mine and the truth. Watch journalist Tanushree Pandey narrate the burning story of Hathras 16 Days. Streaming now on Hindi Z5. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

0: चांद मेरा दिल. वॉच अनन्या पांडे एंड लक्ष्य इन चांद मेरा दिल, रनिंग सक्सेसफुली एट अ सिनेमा नियर यू.
1: चांद मेरा दिल, चांद मेरा दिल.
2: हवा को खुशबू मुबारक, फिजा को मकबूल मुबारक, और आपको डेयरी वैली की तरफ से ईद मुबारक. सेलिब्रेट ईद विद डेयरी वैली 100% नेचुरल पनीर, घी, योगर्ट एंड मिठाई.
3: जी टीवी HD पर देखिए गंगा माई की बेटियाँ.
4: शांतनु जी, हम तैयार हैं आपसे शादी करने के लिए.
3: जो कभी दिल से जुड़े थे, आज मजबूरियों ने उन्हें दूर कर दिया है.
4: समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो सिद्धू.
3: क्या सिद्धू और स्नेहा फिर मिल पाएंगे?
5: स्नेहा जी और हमें कोई रंग नहीं कर सकता.
3: देखिए गंगा माई की बेटियाँ रोज शाम 7 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
6: Saturday nights on Sunrise brought to you by ZTV's Tumse Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
7: Tune into the Love Lounge with me, Amit Soda, right here on Sunrise Radio every Sunday from 7 PM, where we'll be discussing the latest love dilemma that's come in. We'll be talking about my best love tips to offer you, and we'll also be playing the best Bollywood love music you could find anywhere. So make sure you join me, Amit Soda, every Sunday from 7 PM right here on Sunrise Radio for the Love Lounge. The Love Doctor is in the house.
8: Time check with Bright Sun Travel. Bright Sun Travel is celebrating 40 years and you get a gift. Enjoy £40 off per adult on handpicked holidays, plus free transfers, spa vouchers and excursions. Discover our new deals at brightsun.co.uk/40.
9: Time now is 7:47. Good evening.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June।
2: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियाँ, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट asianfuneralcare.com।
3: Saturday nights on Sunrise, brought to you by ZTV's Tum Se Tum Tak. Daily at 8:30 PM on Sky 707, Virgin 809 and Z5.
4: This is Sunrise, the UK's biggest. Asia.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।